यसै गरी हामी सुगम सिमेन्ट ले पनि क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा सुगम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज।

0: बड़ा अवसर सुबड़ा अवसर नर्विक अस्पताल तथा काठमाडौं डायबिटीज तथा थायराइड सेन्टर का वरिष्ठ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर किरण आचार्य अब देखि प्रत्येक महीना को तेसरो सोमवार एस जेस फार्मेसी तथा दीपमाला लाइफ केयर सेन्टर में आई रहने उपचार होने समस्या मधुमेह सुगर रोग थायराइड को समस्या महिलावरी को समस्या भिटामिन डी को समस्या कैल्सियम घटबड़ होने समस्या थप जानकारी तथा नाम दर्ता को लागि जेस फार्मेसी तथा दीपमाला लाइफ केयर सेन्टर धादिंगी धादिंग संपर्क मोबाइल नंबर 9841063239 यो महीना को 22 गते डाक्टर आउँदै हुनुहुन्छ।
1: घरमा चार जना छन्, चार जनाको चारै समस्या, कसलाई कहाँ लिएर जानु?
2: किन गन्थन मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ एक्लै?
1: के हुनु बाबु, दाईको दाँत जचाउनु पर्ने छ, नानीको दाँत मिलाउनु पर्ने छ, बाबुको दाँत निकाल्नु पर्ने, अनि म आफैलाई नयाँ दाँत राख्नु पर्ने, कसलाई कहाँ लिएर जाने होला?

0: राष्ट्र बैंक किसान प्राप्त नौ वर्ष को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

उठे खबर सुने सरकार को नाम उदौला जिला भरे हम मन भाम खबर सुने सरकार ने दिशान अनुदान खाली खाने छैन हमले खाना सरकार ने जे सुविधा दिए पानी पाइना एक किलो मल किन्न तीन।

लटारी समिति भाग ने आयोजना रक्तदान कार्यक्रम में 37 जना रक्तदान करे। नुवाकोट में बिहार साझ भएको सवारी दुर्घटना में 1 जना को मृत्यु। सरकार ने गैर आवासीय नेपाली ढिटो बजार में सहभागी कराने। सरकार ने 21 अर्ब 24 अर्ब को बजेट। नवयुवा आंदोलन में ध्वस्त भएका सरकारी भवन को पुनर्निर्माण गर्न बजेटमै व्यवस्था। यसका साथै अहिलेलाई खबर यति नै। बेलुकी 8:30 बजे को खबर लिएर आउँछु। प्राविधिक मित्र अभिकललाई धन्यवाद दिँदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म व्यक्ति बिदा हुन्छु। नमस्कार।